0: Bagi unti anak.
1: Apa sahaja nak.
2: Bagi orang kosar cinta.
3: Besan dia apa?
4: आम्ही रील्स करियांगे
5: हां जायत आंटी
4: हां तुका फेमस करता
5: हां
4: सॉन्ग गावता हां डांस करियां जायत गे
5: हां जायत

0: की तुझे पुत्ता के रील्स करू जाय नांगी तुझे पुत्ता के फेमस करिया मन
1: मोचा पुत्ता तू ये फेमस कर छे ना का तुझे सब पुत्ता फेमस कर
0: तुम काले रे अंगा रौन ठेंगा ठेंगा करते बिथेर ये तू का देंगा देंगा
2: तू ये काले सैबिनी बुरगे ने ना तना तना अनिकोने नस्ते
0: तू इल्ले शो गे राव तू वेंस तक माथे दौर नो आज तो एक संग लायक ना तू थोन न पण बिथेर वस पणे
2: जायगी हमका हजार जायगी
3: आले को पुत्ता देंगा देंगा संजय निस्ता का लेंगे नहीं
0: निस्ता का सदाई खाले कर चमाई मुझे मांस रगत नहीं हड़ा
3: तुझे आड़ा ना कर पुता ती नंजे चाड़ा मका सा बोगदा उचिना ते आनी तू ते मोबाइल अर्दा मुनो टोमेटो चेर आनी सुगे चेर आनी पुरा आड़ों चे ना का बाईले खाई ना का
0: बाईले ना भीतर ले ना दन पर ची वाची बजे नी बोगड़ा गंग की ली फड़ी ऐसा टेंस आनी खाले
3: अरे को पुता मका वाची बजी जाता मका खाई जाता पुन थप्पक जाते वाई नंगी
0: भूख लग ला रे सब

0: Radio Saran 107.8 FM.
1: किशोर कुमार साहब के लिए क्या कहा जाए, जैसे अभिनेता वैसे गायक। सच तो यह है कि प्लेबैक सिंगर को अभिनय जरूर आना चाहिए। किशोर साहब ने जब खुद के लिए गाया तो लाजवाब गाया, और जब दूसरे के लिए गाया तो लगता उसी के लिए गाया। किशोर कुमार साहब 500 साल में एक बार पैदा हुए।